0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
2: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 6 बज्यो।

0: ओ मिज्यू नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार मिज्यू नमस्कार।
0: ल बधाई छ है, बिहे गर्न लाग्नु भएछ।
1: ल धन्यवाद धन्यवाद मिज्यू। अनि बधाईले मात्रै त पुग्दैन है मिज्यू, जनता गएर छमी नाच्नु पनि पर्छ क्या
0: है मिज्यू। म त बिहेमा आउँदिन होला।
1: ल मिज्यू, मेरो बिहेमा किन न।

लस्सो है भेबे फेबे मा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोर मा नगफारम मा असिम टमाटर की ट्रनेल मा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरी टीम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तर ला जम्मनु सामान मा होलसेल मूल्यारी यंग असेम दिम सम्मन बोरबारी ध्वनिला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओमा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नगफारममा असेम टमाटर की ट्रनेलमा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला दिउँसोको 3 बज्यो।

0: नयाँ नेपालको नयाँ रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
2: उल्लेख अछि। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव रसुआ के भोटेकोशी नदी में यह भादव 10 गते बुध दिन आल बाढ़ के कारण रसुआ नुआकोट धादिंग लगायत जिला में अधिक जनधन के क्षति भेल घटना प्रति दुख व्यक्त कयलनि अछि। आई विज्ञप्ति मार्फत आई विपद के अकाल में मृत्युवरण करें नेपाली नागरिक विदेशी पर्यटक तथा तीर्थयात्री सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत ओ दिवंगत आत्मा सभक चीर शांति के कामना कयलनि अछि। विपद में पड़ल व्यक्ति सभक उद्धार बेपत्ता भेल व्यक्ति सभक खोजी तथा घायल भेल व्यक्ति सभक शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करैत उपराष्ट्रपति यादव घायल भेल व्यक्ति सभक इलाजक लेल सबसे आग्रह कयलनि अछि। एक दोसर के सहारा या सहयोगी बनवाक सामूहिक कर्तव्य भेल उपराष्ट्रपति यादव बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नुआकोट के बिदुर तथा लगपास के क्षेत्र के स्थलगत निरीक्षण कयलनि अछि। बुध दिन भिनसर 9:30 में सड़क मार्ग होइत पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लमसाल सहित नुआकोट प्रस्थान के प्रधानमंत्री शाह प्रभावित बस्ती के भौतिक अवस्था तथा बाढ़ से भेल क्षति के अवलोकन कयने छलथि। निरीक्षण पश्चात ओ आई काठमांडू घूरल छथि। बुध दिन रसुआ स्थित भोटेकोशी नदी में आल बाढ़ से नदी तटीय क्षेत्र बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नुआकोट के बिदुर तथा लगपास के क्षेत्र के स्थलगत निरीक्षण कयलनि अछि। बुध दिन भिनसर 9:00

0: लस हे मेबे फेबे मा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोर मा नग फारम मा असिम चमटार की टनेल मा सिंगबे
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यदि बेला बेलुकी को 7 बजे।